0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो ओजितोजिक हिंदी कांड को सीधा कश्मीर सुन रहे हैं। आपके साथ है शोरन योजोवा और हमारे प्रोड्यूसर अजीजोवा दौलत। इस घंटे की मुख्य खबरें। दुशंबे 17-18 जून को ताजिकिस्तान कोरिया 2024 सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी करेगा। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान चीन मध्य एशियाई विश्वविद्यालय गठबंधन में शामिल हुआ। ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विद्वानों ने चीन में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लिया और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान कोरिया 2024 सांस्कृतिक महोत्सव 17-18 जून को दुशंबे में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और ताजिकिस्तान और कोरिया गणराज्य के समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस आयोजन से दोनों देशों के कलाकारों, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों और आगंतुकों की एक साथ आने की उम्मीद है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसी समाज के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये त्योहार ताजिकिस्तान और कोरिया के बीच बढ़ती दोस्ती और साझेदारी को दर्शाता है और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है। उज्जैन इंस्टीट्यूट अधिकारी के तौर पर चीन मध्य एशियाई विश्वविद्यालय गठबंधन का सदस्य बन गया है। संस्थान ने घोषणा की। शैक्षिक मामलों के उप रेक्टर मनुचेर केंजाजोदा ने मध्य एशियाई में उच्च गुणवत्ता वाले चीनी भाषा शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लिया, जहां शियान अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय के नेतृत्व ने उन्हें एलायंस सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये प्रमाण पत्र चीनी भाषा शिक्षा में संस्थान के उच्च मानकों और युवा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण करने में इसके योगदान के मान्यता में प्रदान किया गया था। गठबंधन में सदस्यता से अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक समुदाय में संस्थान की स्थिति बढ़ाने और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में उच्च शिक्षा संस्थान के साथ अकादमिक सहयोग का विस्तार करने के लिए अनुकूल स्थिति बनाने की उम्मीद है। ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 मई को ताजिकिस्तान और चीन के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के अध्ययन के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लिया। विश्वविद्यालय के प्रेस केंद्र ने बताया, संगोष्ठी का आयोजन चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंटरनेशनल ऑफ बोइनलैंड स्टडीज के पहल पर किया गया था और इसमें विभिन्न देशों के प्रमुख विद्वानों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाया गया था। ताजिक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सत्रों और वैज्ञानिक चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया, शोध पत्र प्रस्तुत किए और आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों पर आदान प्रदान में योगदान दिया। इस आयोजन ने दोनों देशों के बीच अकादमिक संवाद को मजबूत करने और वैज्ञानिक सहयोग के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि तजिकिस्तान गणराज्य के परिवहन मंत्री आजम इब्राहिम ने परिवहन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए 24 मई को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष लोक बहुदुर तपा से मुलाकात की। बैठक के दौरान पार्टियों ने तजिकिस्तान और ईसाओ के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें आधुनिक कौशल और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जो स्थित विकास के लिए 2023 एजेंडे के तहत संयुक्त राष्ट्र स्थित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। बैठक के परिवहन क्षेत्र के स्थित विकास का समर्थन करने, अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देने और विकासशील देशों के हितों में विश्व का सहयोग जुटाने में इसी ऐसा उसे की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। पेरिसने वालों ये तस्ता समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हमारे रेडियो के साथ रहिए।

नमस्कार प्रचेतो, हम आपको दिन के बजट प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

Masudi Sipantka Janam San 1943 में खुरासान के पश्चिम सरबिशा जिले में हुआ। उसका पिता सैनिक था और सिपांत साहब ने भी स्कूल के बाद पुलिस विद्यालय में पढ़कर ईरान पुलिस के विभिन्न पद में सेवा की। सन 1980 उसने अमेरिका जाके पलायन किया। सिपांत बचपन से शायरी से रुचि रखता था। उसकी शायरी ईरान के समाचार पत्र और पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थी। अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है। साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था। मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूदी सिपान ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा। मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा

0: इस तरह शन के एक होल में ताजिकिस्तान के सरकार के लिए प्रस्तुत किया। मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ। ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है। उसी इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि साल के 6 महीने मैं ताजिकिस्तान में रहूं और कई विद्यालयों और रेडियो या टेलीविजन चैनल में काम कर सकूं। साथ ही आशा है कि ताजिकिस्तान के अभियायत्र मुझे मिलेगा।
1: از شهد ماتم از او

जैसे हमने बताया कविता मैं आर्यन हूँ मसूदी सिपान द्वारा सन 2002 ताजिकिस्तान में लिखा हुआ। इसके बाद इस कविता को अमेरिका लेकर उसे फारसी भाषा का लाकर मरियम जलाली और उसके पति को गाने के लिए पेश किया। श्रीमती मरियम जलाली का जन्म सन 1948 को ईरान में हुआ। मरियम जलाली अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाती है पर ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद इस देश में कैलिफोर्निया में रहती है। मरियम जलाली ने सन 1995 कला कार्य शुरू करके पहले बार एक फिल्म में जिसका निर्देशक बहमान जरीनपुर था भाग लिया। उसके बाद उसने बहुत दूसरे फिल्मों में भूमिका निभाई। मरियम जलाली के व्यवसायी मुनीम था और इस क्षेत्र में उसने विभिन्न कार्यालयों और कंपनियों में काम किया है, पर उसकी आवाज भी अच्छी थी और उसने कई गाने गा के दर्शकों के लिए प्रस्तुत किया, विशेष रूप से दरो नफस की भी मीराम दरो अरजुए तुबोशम, नाजुक दिल, बारिश और मैं आर्यन हूँ गानों द्वारा बहुत लोकप्रिय हुई है।

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।

0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार 1 घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: नमस्ते जी प्यारे सुनने वालों, आप रेडियो आवाज़ी ताजिक हिंदी कांकोस सीधा कश्मीर सुन रहे हैं। आपके साथ है शोइरा न्यूज़ोवा और हमारे प्रोड्यूसर अज़ीज़ोवा दौलत। इस घंटे की मुख्य खबरें। दुशंबे 17-18 जून को ताजिकिस्तान कोरिया 2024 सांस्कृतिक महोत्सव की मेजबानी करेगा। उज्जैन अंतर्राष्ट्रीय संस्थान चीन मध्य एशियाई विश्वविद्यालय गठबंधन में शामिल हुआ। ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के विद्वानों ने चीन में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लिया और अन्य समाचार हिंदी भाग को सुन सकते हैं। ताजिकिस्तान कोरिया 2024 सांस्कृतिक महोत्सव 17-18 जून को दुशंबे में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना और ताजिकिस्तान और कोरिया गणराज्य के समृद्ध सांस्कृतिक और कलात्मक विरासत के बारे में अधिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस आयोजन से दोनों देशों के कलाकारों, सांस्कृतिक प्रतिनिधियों और आगंतुकों की एक साथ आने की उम्मीद है, जो सांस्कृतिक आदान प्रदान और आपसे समाज के लिए एक मंच प्रदान करेगा। ये त्योहार ताजिकिस्तान और कोरिया के बीच बढ़ती दोस्ती और साझेदारी को दर्शाता है और लोगों के बीच घनिष्ठ संबंधों को बढ़ावा देने में सांस्कृतिक कूटनीति के महत्व को रेखांकित करता है। उज्जैन इंस्टीट्यूट अधिकारी के तौर पर चीन मध्य एशियाई विश्वविद्यालय गठबंधन का सदस्य बन गया है। संस्थान ने घोषणा की। शैक्षिक मामलों के उप रेक्टर मनुचेर केंजाजोदा ने मध्य एशियाई में उच्च गुणवत्ता वाले चीनी भाषा शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय मंच में भाग लिया, जहां शियान अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन विश्वविद्यालय के नेतृत्व ने उन्हें एलायंस सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया। ये प्रमाण पत्र चीनी भाषा शिक्षा में संस्थान के उच्च मानकों और युवा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण करने में इसके योगदान के मान्यता में प्रदान किया गया था। गठबंधन में सदस्यता से अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक समुदाय में संस्थान के स्थिति बढ़ाने और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में उच्च शिक्षा संस्थान के साथ अकादमिक सहयोग का विस्तार करने के लिए अनुकूल स्थितियां बनाने की उम्मीद है। ताजिक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के एक प्रतिनिधिमंडल ने 25 मई को ताजिकिस्तान और चीन के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों के अध्ययन के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संगोष्ठी में भाग लिया। विश्वविद्यालय के प्रेस केंद्र ने बताया, संगोष्ठी का आयोजन चाइनीज अकेडमी ऑफ सोशल साइंसेज के इंटरनेशनल ऑफ बोइनलैंड स्टडीज के पहल पर किया गया था और इसमें विभिन्न देशों के प्रमुख विद्वानों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाया गया था। ताजिक प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व सत्रों और वैज्ञानिक चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया, शोध पत्र प्रस्तुत किए और आपसी हित के प्रमुख क्षेत्रों पर आदान प्रदान में योगदान दिया। इस आयोजन ने दोनों देशों के बीच अकादमिक संवाद को मजबूत करने और वैज्ञानिक सहयोग के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया। परिवहन मंत्रालय ने बताया कि ताजिकिस्तान गणराज्य के परिवहन मंत्री आजम इब्राहिम ने परिवहन क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए 24 मई को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष लोक बहादुर तपा से मुलाकात की। बैठक के दौरान पार्टियों ने ताजिकिस्तान और ईसाओं के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें आधुनिक कौशल और सुरक्षित परिवहन नेटवर्क के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जो स्थित विकास के लिए 2030 एजेंडे के तहत संयुक्त राष्ट्र स्थित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान देता है। बैठक के परिवहन क्षेत्र के स्थित विकास का समर्थन करने, अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देने और विकासशील देशों के हितों में वैश्विक सहयोग जुटाने में इसी ऐसा की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। पेरिसने वालों ये तस्ता समाचार हमारे दूसरे प्रसारण जा रहे हमारे रेडियो के साथ रहिए।

नमस्कार प्रचेतो, हम आपको दिन के बचत प्रस्तुत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम अंतर्राष्ट्रीय बाल संरक्षण दिवस के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।

ज्यादा थकी आप अभी रेडियो आवाजी ताजिको सुन रहे हैं। कार्यक्रम के इस पाठ में हम एक गाने के बारे में बताते हैं जो हमारे राष्ट्र के इतिहास को दर्शाता है। वो कहता है मैं आर्यन हूँ।

गाना मैं आर्यन हूँ लोगों के प्रिय गानों में से एक है कि रेडियो और टेलीविजन द्वारा नियमित रूप से दिखाई जाती है। इस गाने को देश के लोग मरियम जलाली ईरानी कलाकार से सुनकर परिचित हुए। इस गाने की पैदाइश कैसी हुई है आइए जानते हैं।

0: Masudi Sipantka Janam San Uniso Tentalisme, Hurasan Ki Paschim, Serbisha, Zilemehua. Uska Pita Seinikta or Sipant Sabnebhi, Skulke Bat Pulis Vidyale Me Parkar Iran Puliski Vibhin Pasme Sevaki. San Uniso Asi Usne Amerika Jaki Palayankia. Sipant Bachpanse Shairi Se Ruchi Raktata. Uski Shairi, Iran Ke Samachar Patr or Patrikao Me Prakashit Hotiti. अमेरिका में भी उसने अनुसंधान और अध्ययन को नहीं छोड़कर विभिन्न शायरी पेश की है। साथ ही वो अमेरिका के फारसी भाषी रेडियो और टेलीविजन में सक्रिय रूप से काम करके विभिन्न सम्मेलनों में भाग लेता था। मैं आर्यन हूँ कविता को लिखने के बारे में मसूद सिपान ने एक ताजिक पत्रकार के साथ इंटरव्यू में कहा। मैंने मैं आर्यन हूँ की कविता को ताजिकिस्तान में लिखा और इस तरक्षण के एक होल में ताजिकिस्तान की सरकार के लिए प्रस्तुत किया। मैं ताजिकिस्तान को फारसी भाषी देशों के दिल और हृदय मानता हूँ। ताजिकिस्तान का भूमि अगर छोटा हो पर उसका इतिहास और राष्ट्र बहुत बड़ा है। उसी इंटरव्यू में उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि साल के 6 महीने मैं ताजिकिस्तान में रहूं और कई विद्यालयों और रेडियो या टेलीविजन चैनल में काम कर सकूं। साथ ही आशा है कि ताजिकिस्तान के अभियंत्र मुझे मिलेगा।
1: از شهد ماتم از او

प्यारे सुनने वालों, ये थी जानकारी एक गाने के बारे में। हमें आशा है कि आप इस गाने में आर्यन हो की उत्पत्ति और इतिहास से परिचित हुए। आप खुजा सई मिर्जोवाली द्वारा गाए गए इस गाने को सुनकर आनंद लेते हैं।